0: नमस्कार, म गायक अञ्जुली शर्मा।
1: नमस्कार, म गायक तथा सर्जक एके सापकोटा। रात जाँदै जान्न गीत हजुरलाई कस्तो लाग्छ एकचोटि हेरेर लाइक कमेन्ट अनि सेयर पनि गरिदिनु होला। धन्यवाद।

Elumbu FM 89.6 MHz. हेलम्बु FM 89.6 MHz मा अब तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ हेलम्बु खबर।

0: ना एदा
1: अले बड़ी हुआ
2: क्यों क्यों कर रही है तू
3: जिम साइज मोम ब्रेनी
1: ब्रो ब्रो ब्रो थानू तुम लात क्यों मार दिया था
2: चल नहीं लात देना
1: पक
2: इतनी इतनी बोर्ची बोर्ची तेरे

0: Elambu FM 89.6 MHz.
1: हेलम्बु FM 89.6 MHz मा अब तपाई सुन्न सक्नुहुन्छ हेलम्बु खबर।